गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, कैसे हो आप? एकदम मस्त, बढ़िया, हालात, जज्बात, ख्यालात, सब कुछ एकदम मस्त हो गए क्योंकि आरजे अदनान आपके साथ आया है। लेकिन इससे बड़ी खुशी आपके लिए ये है कि यार वीकेंड आ चुका है, शनिवार आ चुका है। All is well. आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM। जी हाँ, आज है शनिवार, और शनिवार मतलब कितना एकदम सुकून भरा फील करता ना। सैटरडे मतलब इस लफ्ज के अंदर सुकून है। अगर सुकून के कोई और मायने हो गए ना, वो है शनिवार। ये नाम भले आपको ना तो आज वीकेंड की दो छुट्टियां हो या बस एक ही छुट्टी मिलती हो संडे की, बट फिर भी सैटरडे के दिन ना तो ऑफिस जाते वक्त एकदम रिलैक्स फील होता है, क्योंकि पता है यार कल एंजॉय करना है और रिलैक्स करना है। इस वजह से आज वर्कलोड ना कितना भी हो, अपने आप को आप संभाल लेते हो और कहते हो ठीक है यार, एडजस्ट कर लेंगे, आज ही का दिन है ना यार। सो आप इस वीकेंड को और एकदम ताबड़तोब बेहतरीन आणि एकदम मजेदार बनवूयात येणाऱ्या सोबत डुपर हिट गाण्यांसोबत, आणि आजची ही मॉर्निंग गुड करूयात या सोबतच। थॉट ऑफ द डे आजचा हाच आहे की यार मित्रांनो, स्वतःला थोडा वेळ द्या। कसे बघा आपल्या आयुष्यात ना, तर सॅटरडे आणि संडे काय होतो माहिती? आपल्या विश्रांती करण्याचा दिवस असं आपण समजू शकतो। इतक्या भागदौड मध्ये तुम्ही कसंही विश्रांती करण्याचं विसरून जातात, त्यामुळं स्वतःला थोडं टाइम द्या आणि या वीकेंडला स्वतःसोबत थोड्या गप्पा मारा। असं म्हणजे कसं आहे, आरशासमोर उभं राहा आणि स्वतःशी बोला, किती मन मोकळं होतंय तुम्ही बघा, ट्राय करा, खूप छान वाटेल आणि एकदम मन प्रसन्न होईल। वा अशाच थॉट सोबत आजच्या मॉर्निंगला गुड करूयात आणि माझ्यासोबत येणारी सुपरहिट गाणी एन्जॉय करूया। सो स्टे ट्यून विथ आरजे अदनान इन द शो।

गर्मी का मौसम शुरू है और जहाँ देखो वहाँ पर बाहर निकलने के पहले हम सोच रहे हैं कि यार बाहर निकलना चाहिए या नहीं। और गर्मी के मौसम में एक अक्सर महसूस होता है यार बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही यार। अब पहली वजह समझिएगा कि गर्मी में हमारी बॉडी खुद को ठंडा रखने के लिए इंटरनल हीट कम करती है, इस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और भूख कम लगती है, लेकिन इस चक्कर में खाना छोड़ना बीमारी को दावत देना होता है। तो चलिए नोट करिए 3 सुपर इजी टिप्स। लिक्विड डाइट बढ़ाइए, दिन भर पानी, नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी पीते रहिए, ये डिहाइड्रेशन से बचाएगी और डाइजेशन ठीक करेंगे। सेकंड वन इज हेवी नहीं लाइट खाइए, एक बार में ठूस ठूस कर मत खाइए, छोटी छोटी मील लीजिए, दोपहर में दही खीरा और तरबूज जैसी ठंडी चीजें खाइए। गरम जगह पर बैठकर खाना ना खाए, फैन या कूलर के सामने आराम से बैठकर खाए, भूख अपने आप खुलेगी आपकी। तो दोस्तों खाना छोड़िए मत, सही तरीके से खाइए और इस गर्मी को एंजॉय कीजिए। अगली बार जब भूख ना लगे तो मेरी ये बातें जरूर याद रखना और सुनते रहना।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी, ऑल इज वेल. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. ऑल इज और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, HOD ऑफ MGM यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट. सो मैम, आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि कंपनीज और HR डिपार्टमेंट्स को एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
1: देखिए, HR हर एक कंपनी के बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट होते हैं, डेफिनेटली. सो इनफैक्ट HR डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके वेलबींग की. तो उन्होंने मतलब मेंटल हेल्थ डेज या यू नो मेंटल हेल्थ लीव है ना, 2 महीने में एक दिन या जो भी मतलब उनकी कंपनी पॉलिसी अलाउ करे उन, या अगर वो कोई एक नई पॉलिसी बना पाए इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ लीव्स, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी डायनामिक. अगर वो कर सके तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. प्लस हर एक कंपनी ने काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो टॉक्सिक एम्प्लॉयज भी होते हैं, जैसे एक दो एम्प्लॉयज हैं जो है ना, हर कंपनी में हर डिपार्टमेंट में होता ही है मोस्टली, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं. अब ये एक दो टॉक्सिक लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है. तो ऐसे एम्प्लॉयज के खिलाफ डेफिनेटली HR ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. तो ये कुछ है ना, 3 चीज़ें हैं. तो ये HR को स्ट्रिक्टली अगर इन्होंने फॉलो की तो वर्क एनवायरमेंट बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है.
0: वैसे इस तरीके से भी HR डिपार्टमेंट काम कर सकता है ताकि उनके एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ ठीक रह सके. वैसे एक सवाल भी ऐसा है, अगर बॉस ही सब फसाद की जड़ हो तो एम्प्लॉय क्या करे? खैर, जो का पार्ट. बाय द वे दोस्तों, आपके भी मन में ऐसे कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर. एंड स्टे ट्यून्ड.

फरमाइश फरमाइश एंड फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर आरजे अदनान आपके साथ आया है आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए। देखो मेरा काम है फरमाइश पूरी करना और आपका काम है आपकी फरमाइश मुझे बताना। तो आज की गाने की फरमाइश आई है उर्मिला काले की तरफ से इस गाने के लिए। क्या बात है, खूप सुंदर गाणं आहे। तर उर्मिला यांची ही फरमाइश आपण आता पूर्ण करूयात आणि त्यांचं आवडतं गाणं आपण प्ले करूयात। बाय द वे, तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर तुम्ही आम्हाला कळवू शकता, डीएम करा इंस्टावर आरजे अदनान या इंस्टा पेज वर। आणि बाकी तर फरमाइश सोबत सुपर डुपर हिट गाणी सुद्धा आपण ऐकूयात। सो स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
1: उत्कर्ष क्लिनिक हर्सुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जळगाव रोड छत्रपती संभाजीनगर अंतरुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8889 2688।
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515।

0: अक्सर एक डायलॉग हमने सुना होगा, किसी आंटी ने कहा होगा, किसी दादी ने कहा होगा, किसी बुआ ने, किसी चाची ने, कि बेटियां पराया धन होती है। सुना है ना ये डायलॉग। हेलो, माई सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। और कहते हैं कि बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन सच में पराई हो जाती है क्या? अब इसी सोच को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जवाब दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शादी होने का मतलब ये नहीं होता कि बेटी अपने मायके या परिवार से अलग हो जाए। अगर बेटा परिवार का हिस्सा है तो बेटी भी उतनी हकदार है उस परिवार की। दरअसल कुछ जगहों पर ना तो ऐसा नोटिस हुआ है कि बेटी के जो घरवाले होते हैं तो शादी के बाद बेटी को एकदम पराये कर देते हैं, घर की प्रॉपर्टी में से, घर के कुछ हिस्से से, घर के कुछ कामों से उसे दूर कर देते हैं, और पूरी जितनी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ होती है या जिस पर मालकी हक उस लड़की का है तो उस लड़की को ना देते हुए उस घर के बेटे को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत और भेदभाव वाला नजरिया बदलना जरूरी है। कोर्ट का मानना है कि आज की बेटियां सिर्फ रिश्ता नहीं निभाती बल्कि कई बार अपने माता पिता का सहारा भी बनती है। उनकी जिम्मेदारियां और योगदान किसी भी बेटे से कम नहीं है, और ये हमने अक्सर देखा है किसी किसी घर में ना तो बेटा एकदम निकम्मा निकलता है, बट एक बेटी अपने पूरे परिवार का, माता पिता का शादी के बाद भी ख्याल रखती है। और एक सवाल भी उठता है कि अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार का हिस्सा रहता है तो बेटी क्यों नहीं रहती है। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक सोच को बदलने वाला भी माना जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, शादी से सरनेम बदल सकता है लेकिन बेटी का अपना परिवार कभी बदल नहीं सकता। उस परिवार पर उसका पूरा हक होता है। तो इसी वजह से कभी भी किसी लड़की को ये मत कहना कि लड़की है तो पराया धन है। वो पराया धन नहीं भाई, वो लड़कों से ज्यादा समझदार होती है। वरना हमने तो देखा है शादी होने के बाद कुछ लड़के ऐसे बदल जाते हैं कि माँ बाप को छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। अब क्या ही बोले, समझे? Stay tuned.
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6IDCO छत्रपती संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

भैया जून महीना शुरू हो चुका है लेकिन बारिश तो दूर दूर तो कहीं नजर नहीं आ रही है और सब लोग परेशान हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। परेशान इसलिए भाई, आप सोचोगे यार अभी तो महीना शुरू हो गया, आने वाले वक्त देखेंगे बारिश कैसी आएगी। वैसे केरल में सबसे पहले मानसून आता है ऐसा कहते हैं, और केरल में मई महीने की एंडिंग में मानसून आना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा लेट आया। उसके बाद फिर जैसे ही ना जून शुरू होता है, मानसून के पहले की बारिश भी आती है, लेकिन इस साल ऐसी बारिश भी नजर नहीं आई। इस वजह से थोड़ी टेंशन क्रिटिकल है। एंड फिलहाल हवामान विभाग की तरफ से कहा गया है कि अपने शहर में भी आने वाले 3 दिनों के अंदर बरसात आ सकती है। ऐसा ना तो लास्ट वीक भी कहा गया था, यानी कि पिछले वीक भी, लेकिन बरसात कुछ आई नहीं। तो इस साल का मानसून कैसा है, क्या हालत रहेगी, बरसात बहुत होगी या थोड़ी कम होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल अपने दिमाग में है, तो इनके जवाब आज हमें मिलेंगे अपने इस शो में, लेकिन कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए आप जरा सोचिए कि मानसून आ सकता है या नहीं आ सकता है, और कुछ ही देर के बाद अपने साथ रहेंगे एक्सपर्ट श्रीनिवास ओमकर सर, उनके साथ हम बात करेंगे अबाउट 2026 का मानसून। सो कुछ ही देर में लौट कर आऊंगा, स्टे

आपने और हमने ना तो सेलिब्रिटी के फैंस तो देखे, लेकिन किसी सेलिब्रिटी के बॉडीगार्ड्स के फैंस देखे? फिलहाल यही शुरू है भाई। आरजे अदनान आपके साथ है एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और सोशल मीडिया पर ना तो बहुत एकदम जोरदार चर्चाएं शुरू है, वो है रामचरण के बॉडीगार्ड की। जी हाँ, रामचरण का जो बॉडीगार्ड है वो है एमएमए फाइटर, उसको उन्होंने बॉडीगार्ड के रूप में हायर किया है। और ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 4 लाख प्रतिदिन इसको पेमेंट दी जाती है। भाई साहब क्या बात है यार, इसमें करियर बहुत अच्छा और पैसा भी पैसा है। और ये कन्फर्म नहीं है कि इतना इसको पैसा मिलता है, इतने भी मीडिया रिपोर्ट्स में आया है ना तो उसमें यही लिखा है। एंड यू नो व्हाट, केविन कुंटा ना प्रॉपर गाम्बिया इस देश से है और 2021 में इटली की नेशनल एमएमए टीम का भी वो हिस्सा रह चुके, यानी कि एमएमए फाइटर है वो। और जब इंडिया में जो आए और जिस तरीके से उन्होंने अपना जलवा बिछा दिया, तो रामचरण के फैंस तो है लेकिन लोग केविन कुंटा इस बॉडीगार्ड के भी फैंस बन रहे हैं। और एक अलग ना तो सेलिब्रिटी वाली उनको वाइब आ रही होगी इंडिया में आने के बाद। एक और सेलिब्रिटी है इंडिया के, उनका भी बॉडीगार्ड ना तो बहुत फेमस है, मतलब वो सेलिब्रिटी तो इतने फेमस है लेकिन उनका बॉडीगार्ड भी उतना ही फेमस है। कौन से सेलिब्रिटी है जरा बताइए मुझे, और डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड।

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज की बच्ची ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज की बच्ची नहीं समझ पाएगी। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

वेट वेट वेट बेरंग के दिन वापस से हम सुनेंगे, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिएगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, एग्जैक्टली 10:41 का वक्त हो चुका है घड़ी में। आई होप कि आज अब आप ना तो अपने ऑफिस तक पहुंच गए होंगे, मतलब हाँ वो लोगों के मज़े यार जिनका आज सैटरडे है और घर पर बैठ कर एंजॉय कर रहे अपना वो वीकेंड। लेकिन मुझ जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको वीकेंड की बस एक ही छुट्टी मिलती है और सैटरडे के दिन बिना तो ऑफिस जाना ही पड़ता है। और यू नो व्हाट, जब सैटरडे के दिन हम ऑफिस जाते हैं ना, तब हर दिन जैसा स्ट्रेस नहीं होता है और काम करने का लोड नहीं होता है। मन में एक ख्याल होता है कि चलो यार आज सैटरडे है ना, आराम से काम होगा, कल वीकेंड है, संडे एंजॉय करना है। चाहे कितना भी काम हो, अपने आप वो स्ट्रेस लेवल डाउन नज़र आता है, क्योंकि शनिवार में वो एक सुकून होता है। तो इसी शनिवार को एकदम अच्छे से आप गुजारिएगा और हाँ कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कीजिएगा घर के बाहर निकलिए। और धूप है भाई, तो इस तरह से दोपहर में नहीं शाम के टाइम पर बाहर निकलिए एंजॉय करने के लिए अपना वीकेंड। एंड यू नो व्हाट, एक बात तो सच है यार कि संडे नाइट से ज़्यादा मज़ा सैटरडे नाइट में आता है, एक अलग सुकून होता है सैटरडे नाइट का। सो क्या है आज आपके प्लान सैटरडे नाइट के, ज़रा बताइए, DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, और ये बढ़िया सा गाना एंजॉय कीजिएगा, तुम क्या मिले विद RJ अदनान। कुछ देर के बाद लौट कर आऊँगा, बहुत सारी बातें होगी, तब तक स्टे ट्यून एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन MGM।

किंग की आवाज में गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे, तू है सॉरी तू जाना ना पिया, बहुत ही बढ़िया गाना है। इसके लिरिक्स भी बहुत बेहतरीन है, तेरे बिन जी नहीं लगता। और नहीं लगता भाई, जिन जो लोग इस फेज से गुजरे ना तो वही इस गाने को फील कर सकते हैं। और अभी हम ज़रा फील करते हैं अपने वीकेंड वाले वाइब को, और फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, क्योंकि भाई सैटरडे है और मैं तो चला अपना सैटरडे एंजॉय करने के लिए। आप भी अपना सैटरडे एंजॉय कीजिएगा, बाकी तो मिलते हैं अब ठीक अगले शो में। बाय द वे कल संडे है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरी और आपकी मुलाकात संडे नहीं होती, हाँ मेरी और आपकी मुलाकात संडे को भी होती है एक स्पेशल शो लेके, जिसमें हम बात करते हैं अपने 90s के दौर की। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन 90s का दौर जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, उस दौर की बात होती है। 90s की कुछ प्यारी प्यारी हसीन यादें, गाने, किस्से, कहानियाँ, फिल्में इसकी बात होती है, इसलिए उस शो का नाम है द 90s वाला शो विथ मी यानी कि आरजी अदनान। हर संडे सुबह ठीक 9 बजे, तो कल संडे तो सुबह ठीक 9 बजे मिलेंगे हम, और आपकी कुछ 90s की बेहतरीन सी प्यारी सी यादें होगी तो आप मुझ तक पहुंचा सकते हो डीएम के जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। और इंस्टा पर आ ही गए तो अभी हाल ही में कल इवनिंग में मैंने एक रील डाला है, वो भी ज़रा देख लीजिए, उसको भी लाइक करें, और तब तक के लिए मुझे फॉलो भी कीजिए, हमेशा के लिए कीजिएगा। तब तक के लिए मैंने कहा कि मैं लेता हूँ अभी आपसे अलविदा, मिलते हैं कल 90s वाले शो में। तब तक के लिए एंजॉय करना अपना वीकेंड, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जो भी आपके फोनों पर आ

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: Kajal.
1: Wait. I think we should go that way.
0: ये तो खराब है.
1: ये मेरा लकी चार्म है और ये मुझे हमेशा राइट डायरेक्शन देता है. Sometimes in life, you just have to let it go. और उसी फ्लो में सही मंजिल मिलती है.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: देखा क्या?
1: तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई।
0: प्रमोशन हो गया, कैप्टन बन गया हूँ।

0: अरे कितनी गाड़ी पड़ा, स्पीड का है
1: 90.8।
2: हे, बाकी सब ठीक?
3: बस चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक?
3: बस चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक है ना?
3: बस चल रहा है भाई।
2: What about you?
3: हाँ चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक?
3: बस चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक?
3: बस चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक है ना?
3: हाँ ठीक है।
2: और तेरा?
3: बस चल

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू? हाय

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका पूरा हफ्ता अच्छा गया होगा। आखिरकार शनिवार की शाम आ ही गई और अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, अपने लिए कुछ समय निकालने का और अच्छे गानों का मजा लेने का। पूरे हफ्ते हम सब अपने काम, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होते हैं। ऐसे में शनिवार की शाम एक छोटा सा ब्रेक लेकर आती है, कोई दोस्त के साथ बाहर, कोई परिवार के साथ घर पर, तो कोई बस आराम से अपनी पसंद का गाना सुनता है। जहां भी है, जो भी कर रहे हैं, उम्मीद है आपकी शाम अच्छी बीत रही होगी। और अगर दिन थोड़ा थका देने वाला हो तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक हम आपके साथ हैं शानदार गानों और अच्छी बातों के साथ। वैसे शाम का समय ही ऐसा होता है जब एक कप चाय, थोड़ी बातचीत और अच्छे गाने पूरा दिन की थकान को मिटा देते हैं। बस मुस्कुराते रहिए और इस खूबसूरत शाम को महसूस कीजिए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए हमारे साथ MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

शनिवार की इस प्यारी शाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ पूरे दिल से। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शो शुरू है दिल से। पूरा हफ्ता काम, पढ़ाई, भागदौड़ और जिम्मेदारियों में निकल जाता है। इसमें वीकेंड आते ही हम सोचते हैं कि अब देर रात तक फिल्में देखेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे या सोशल मीडिया पर समय बिताएंगे। लेकिन आज की छोटी सी बात करते हैं अच्छी नींद की। हम अक्सर अपने फ़ोन की बैटरी तो समय पर चार्ज कर लेते हैं, लेकिन खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। सच तो ये है कि अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है। जब हम पूरी नींद लेते हैं तो अगले दिन हमारा मूड बहुत ही फ्रेश रहता है और काम में मन भी लगता है और शरीर ज़्यादा एक्टिव महसूस करता है। कई बार लोग कहते हैं वीकेंड है, आज तो रात भर जागेंगे, लेकिन अगर शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो सोमवार की शुरुआत थकान के साथ ही होगी। इसलिए इस वीकेंड को थोड़ा सा अपने लिए भी निकालिए, स्क्रीन से थोड़ा दूर रहिए, मन को शांत रखिए और अच्छी नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। याद रखिए, अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। स्वस्थ शरीर और खुशहाल मन की शुरुआत अच्छी नींद से ही होती है। फिलहाल आप सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।

आपकी शाम अच्छी गुजर रही होगी। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। आज जरा एक ऐसी बात करते हैं जिसे हम सब जानते तो है लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है खुद का ख्याल रखना। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार, काम, दोस्तों और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर हम खुद ही ठीक हो रहेंगे तभी बाकी चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। खुद का ख्याल रखने का मतलब सिर्फ महंगे स्पा या छुट्टियों पर जाना नहीं, कभी समय पर खाना खा लेना, थोड़ी देर टहल लेना, अपनी मन पसंदीदा गाने सुनना, किसी अपने से दिल की बात करना या बस कुछ मिनट शांति से बैठे रहना, ये भी सेल्फ केयर का हिस्सा है। हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने लिए क्या किया। जवाब बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी अच्छी आदत ही हमें अंदर से मजबूत बनाती है। तो इस वीकेंड दूसरों के साथ खुद को भी थोड़ा समय दीजिए, अपने मन की सुनिए, अपने शरीर की बात मानिए, क्योंकि आप भी उतने ही ज़रूरी है जितने आपके अपने। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे मनीषा। आपने कई बार सुना होगा प्रजा का राजा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? पहले के समय में राजा वो होता था जो राज्य पर शासन करता था, लेकिन एक अच्छा राजा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने लोगों के प्यार, विश्वास और सम्मान से भी बड़ा बनता है, इसलिए उसे प्रजा का राजा कहा जाता है। आज के दौर में अगर इस बात को देखें तो प्रजा का राजा होने का मतलब किसी पद या कुर्सी से नहीं, असली राजा वो है जो लोगों की परवाह करे, उनकी बातें सुने और उनके लिए अच्छा सोचे। और अगर ध्यान से देखें तो हम अपनी छोटी सी दुनिया के भी राजा बन सकते हैं। जब हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, दोस्तों की मदद करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और अच्छे काम करते हैं, तभी हम भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि असली राजा सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि दिल जीतने का होता है। तो आज की शाम बस इतना याद रखिए, जो इंसान दूसरों की खुशी और भलाई का ख्याल रखता है वही सच्चे मायनों में प्रजा का राजा कहलाता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब वक्त है एक शानदार गाने का। जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज है 6 जून। 6 जून का दिन महाराष्ट्र के इतिहास में एक बहुत ही खास दिन माना जाता है। आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, जिसे हम शिवराज्याभिषेक सोहरा के रूप में याद करते हैं। रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। ये सिर्फ एक राजा के सिंहासन पर बैठने का समारोह नहीं था, बल्कि ये स्वाभिमान, साहस और स्वराज्य के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक क्षण था। आज भी हर साल 6 जून को इस दिन को बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर हजारों लोग एकत्र होकर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्श को याद करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि मजबूत इरादे, दृढ़ दृष्टि और जनता के प्रति समर्पण से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। दोस्तों, इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है। इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वो हमें वर्तमान में सही दिशा दिखाने का काम भी करता है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें साहस, नेतृत्व और अपने मूल्यों पर अड़िग रहने की प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए और बढ़ते हैं आगे संगीत की ओर। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कुछ नारे और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि एक भावना बन जाते हैं। जय भवानी जय शिवाजी, ये भी कुछ ऐसे लिरिक्स है जिसे सुनते ही साहस स्वाभिमान और इतिहास की याद ताज़ा हो जाती है। ये लिरिक्स माँ भवानी के आशीर्वाद और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का प्रतीक माना जाता है। सदियों से ये लोगों को हिम्मत आत्मविश्वास और अपने मूल्यों के लिए खड़े रहने की प्रेरणा देता है। जब भी किसी गीत कार्यक्रम या उत्सव में जय भवानी जय शिवाजी की गूंज सुनाई देती है तो माहौल में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प कितना ज़रूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि नेतृत्व साहस और जन कल्याण की एक मिसाल है। यही वजह है कि आज भी उनके विचार और उनकी विरासत लाखों लोगों के दिलों में जीवित रहती है। तो दोस्तों आइए इस प्रेरणादायक भावना को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें, साहस के साथ आगे बढ़े, सही बात का साथ दे और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला बनाए रखे। आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 एफएम साथ है तो बात।
1: अगर प्रिया ऐकले का 16वें पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
2: हो आणि मी तर स्वगणना केली आहे। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार
1: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
2: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
1: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित। तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
3: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
3: ऍडमिशन्स ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299।
4: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
5: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
4: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
5: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, आंतर रुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
6: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
5: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
6: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
7: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शनिवार के इस शानदार शाम में आपका स्वागत है। पूरा हफ्ता काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में निकल गया और अब वक्त आया है वो समय जिसका हम सब इंतज़ार करते हैं, वीकेंड का। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस वीकेंड को कैसे बिताया जाए? अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि 2 दिन की छुट्टी है, आराम करेंगे, लेकिन पता भी नहीं चलता और वीकेंड कब खत्म हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा प्लान बनाना हमेशा अच्छा रहता है। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा प्लान हो, आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, अपनी मनपसंदीदा फिल्म देख सकते हैं या फिर किसी नई जगह घूमने जा सकते हैं। अगर बाहर जाने का मन नहीं है तो घर पर आराम से किताब पढ़ना पसंद कर सकते हैं। संगीत सुनना या अपना मन पसंदीदा खाना खाना ये भी अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, वीकेंड में अपने लिए थोड़ा समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है। वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता हो और जिससे आपका मन हल्का महसूस करे। याद रखिए, एक अच्छा वीकेंड सिर्फ मज़े के लिए नहीं होता बल्कि आने वाले नए हफ्ते के लिए खुद तरोताज़ा करने के लिए भी होता है। तो दोस्तों, अपने वीकेंड को खास बनाइए, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए और खूब मुस्कुराइए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी किसने है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: देखते देखते शनिवार की खूबसूरत शाम अब विदा लेने लगी है। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपने अपने परिवार, दोस्तों या खुद के साथ कुछ अच्छे पल जरूर बिताए होंगे। शनिवार हमेशा एक खास एहसास लेकर आता है। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद ये हमें थोड़ा रुकने, मुस्कुराने और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का मौका देता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये शाम अलविदा कह रही है और एक नया दिन हमारा इंतजार कर रहा है। अगर इस वीकेंड के लिए आपने कोई प्लान बनाया है तो उसे पूरे दिल से एंजॉय कीजिए और अगर अभी तक कोई प्लान नहीं है तो बस थोड़ा आराम कीजिए, अपने मन पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताइए और खुद को आने वाले हफ्ते के लिए तैयार कीजिए। याद रखिए, हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है, इसलिए बीते हुए दिन की अच्छी यादों को साथ रखिए और आने वाले कल का स्वागत एक नई मुस्कान के साथ कीजिए। आपके शनिवार की शाम का हिस्सा बनकर हमें तो बहुत खुशी हुई। आपके साथ बातें करना, संगीत साझा करना और कुछ खूबसूरत पल बिताना हमेशा खास रहता है। सो फिलहाल के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का और सुनते रहिए एमजीएम 94.8 FM, साथ ही तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर।
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट डब्ल्यू

अक्सर एक डायलॉग हमने सुना होगा, किसी आंटी ने कहा होगा, किसी दादी ने कहा होगा, किसी बुआ ने, किसी चाची ने, कि बेटियां पराया धन होती है। सुना है ना ये डायलॉग। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और कहते हैं कि बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन सच में पराई हो जाती है क्या? अब इसी सोच को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जवाब दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शादी होने का मतलब ये नहीं होता कि बेटी अपने मायके या परिवार से अलग हो जाए। अगर बेटा परिवार का हिस्सा है तो बेटी भी उतनी हकदार है उस परिवार की। दरअसल कुछ जगहों पर ना तो ऐसा नोटिस हुआ है कि बेटी के जो घरवाले होते हैं तो शादी के बाद बेटी को एकदम पराया कर देते हैं, घर की प्रॉपर्टी में से, घर के कुछ हिस्से से, घर के कुछ कामों से उसे दूर कर देते हैं, और पूरी जितनी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ होती है या जिस पर माल की हक उस लड़की का है तो उस लड़की को ना देते हुए उस घर के बेटे को वो मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत और भेदभाव वाला नजरिया बदलना जरूरी है। कोर्ट का मानना है कि आज की बेटियां सिर्फ रिश्ता नहीं निभाती बल्कि कई बार अपने माता पिता का सहारा भी बनती है। उनकी जिम्मेदारियां और योगदान किसी भी बेटे से कम नहीं है, और ये हमने अक्सर देखा है। किसी किसी घर में ना तो बेटा एकदम निकम्मा निकलता है, बट एक बेटी अपने पूरे परिवार का, माता पिता का शादी के बाद भी ख्याल रखती है। और एक सवाल भी उठता है कि अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार का हिस्सा रहता है तो बेटी क्यों नहीं रहती है। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक सोच को बदलने वाला भी माना जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, शादी से सरनेम बदल सकता है लेकिन बेटी का अपना परिवार कभी बदल नहीं सकता। उस परिवार पर उसका पूरा हक होता है। तो इसी वजह से कभी भी किसी लड़की को ये मत कहना कि लड़की है तो पराया धन है। वो पराया धन नहीं भाई, वो लड़कों से ज्यादा समझदार होती है। वरना हमने तो देखा है शादी होने के बाद कुछ लड़के ऐसे बदल जाते हैं कि माँ बाप को छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। अब क्या ही बोले, समझे? स्टे ट्यून्ड।

भैया जून महीना शुरू हो चुका है लेकिन बारिश तो दूर दूर तो कहीं नजर नहीं आ रही है और सब लोग परेशान हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। परेशान इसलिए भाई, आप सोचोगे यार अभी तो महीना शुरू हो गया, आने वाले वक्त में देखेंगे बारिश कैसी आएगी। वैसे केरल में सबसे पहले मानसून आता है ऐसा कहते हैं, और केरल में मई महीने की एंडिंग में मानसून आना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा लेट आया। उसके बाद फिर जैसे ही ना जून शुरू होता है, मानसून के पहले की बारिश भी आती है, लेकिन इस साल ऐसी बारिश भी नजर नहीं आई। इस वजह से थोड़ी टेंशन क्रिटिकल है। एंड फिलहाल हवामान विभाग की तरफ से कहा गया है कि अपने शहर में भी आने वाले 3 दिनों के अंदर बरसात आ सकती है। ऐसा ना तो लास्ट वीक भी कहा गया था, यानी कि पिछले वीक भी, लेकिन बरसात कुछ आई नहीं। तो इस साल का मानसून कैसा है, क्या हालत रहेगी, बरसात बहुत होगी या थोड़ी कम होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल अपने दिमाग में है, तो इनके जवाब आज हमें मिलेंगे अपने इस शो में, लेकिन कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए आप जरा सोचिए कि मानसून आ सकता है या नहीं आ सकता है, और कुछ ही देर के बाद अपने साथ रहेंगे एक्सपर्ट श्रीनिवास औंधकर सर, उनके साथ हम बात करेंगे अबाउट 2026 का मानसून। सो कुछ ही देर में लौट कर आऊंगा। स्टे

0: यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।

आपने और हमने ना तो सेलिब्रिटी के फैंस तो देखे, लेकिन किसी सेलिब्रिटी के बॉडीगार्ड्स के फैंस देखे? फिलहाल यही शुरू है भाई। आरजे अदनान आपके साथ है एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और सोशल मीडिया पर ना तो बहुत एकदम जोरदार चर्चाएं शुरू है, वो है रामचरण के बॉडीगार्ड की। जी हाँ, रामचरण का जो बॉडीगार्ड है वो है एमएमए फाइटर, उसको उन्होंने बॉडीगार्ड के रूप में हायर किया है। और ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 4 लाख प्रतिदिन इसको पेमेंट दी जाती है। भाई साहब क्या बात है यार, इसमें करियर बहुत अच्छा और पैसा भी पैसा है। और ये कंफर्म नहीं है कि इतना इसको पैसा मिलता है, इतने भी मीडिया रिपोर्ट्स में आया है ना तो उसमें यही लिखा है। एंड यू नो व्हाट, केविन कुंटा प्रॉपर गाम्बिया इस देश से है और 2021 में इटली की नेशनल एमएमए टीम का भी वो हिस्सा रह चुके, यानी कि एमएमए फाइटर है वो। और जब इंडिया में जो आए और जिस तरीके से उन्होंने अपना जलवा बिछा दिया, तो रामचरण के फैंस तो है लेकिन लोग केविन कुंटा इस बॉडीगार्ड के भी फैंस बन रहे है। और एक अलग ना तो सेलिब्रिटी वाली उनको वाइब आ रही होगी इंडिया में आने के बाद। एक और सेलिब्रिटी है इंडिया के, उनका भी बॉडीगार्ड ना तो बहुत फेमस है, मतलब वो सेलिब्रिटी तो इतने फेमस है लेकिन उनका बॉडीगार्ड भी उतना ही फेमस है। कौन से सेलिब्रिटी है जरा बताइए मुझे, और डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून।

0: फ्रिक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: गाडी पळवतोय, स्पीड काय?
1: 90.8।
2: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ?

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।